0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा यही चाहते हैं, आप थोड़े समय में के लिए पुरुषार्थ के प्रारंभ स्वरूप बन जाओ। बन सकती है कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, बनेंगे प्रारंभ वाले बनेंगे। हाथ उठाओ, हाथ

我，多一首热烈的拥抱你，一首我的。

0: noche del banal. Noche. Conozcas a yo que tina.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: seam covardantita. Jo seig. Papka piara banjet. Fortata papke. Nearest. Or dearest bacha banjet. इसलिए बाप की दुआएं सुते प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं और द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: शिव के ऊपर अक के फूल चढ़ते तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे तो ये क्रोध का अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर लो तो आप दर्पण बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है। अच्छा, थक नहीं जाना, हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होगी।

0: İnanıyor. Agar tora bir kamu hua, to aage ke liye mat rakhe. Chhod nahi dena, padhte rehna. Baap dada combined hai, kehte ho na. Saath hai nahi kehte ho, combined. Aise samay par agar kuch bhi ho, baap dada combined hai, usko samne lake phir arpan kar do. Lekin baap dada chahte hai ki sabhi bachche number one ho. दी हुई चीज अमानत हो गई. हाथ उठाया अर्थात दिया तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है. तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में ख्यानत है, ये बुरा माना जाता है. दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती क्योंकि मेरी नहीं.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम. सत्यम शिवम सुंदरम.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आती माला भी रुकी हुई? ब्रह्मा बाप ने कहा, चारों ओर के बच्चे हर एरिया एरिया के मर्ज कर दी गई, जैसे आपके सोन है ना, तो ऐसे एक एक सोन नहीं, सोन तो बहुत बड़ी बड़ी है ना, एक एक विशेष देश इमर्ज कर दी गई और सबकी चेहरे देखती गई। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे और माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितने सर्विस में उन्नत

Jorge.

दृश्यमान और निर्माण दोनों की बैलेंस में अंतर सेवा के उन्नति में निर्माण

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Charlie!

Tiamat.

సంతోషం మడిన స్వయం కోపి పిటి.

ಶಕ್ತಿ. Just something.

Arsan Jet.

సంతుష్టం.

ちゃん。Sleep.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बच्चा

को तेरे में बदलने में।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को खुशी है कि हर बच्चा चाहे सिंधी है चाहे हिंदी है, लेकिन हर बच्चा खुश रहता है मेजॉरिटी, ये देख के बाबा बहुत खुश होता। खुशी कभी नहीं कमाना, बात होती है लेकिन बात हमारी खुशी क्यों ले जाए। खुशी हर एक ही अपनी चीज है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। बातें आती है, वो भी पेपर आता है। तो जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी है वो पेपर में सदा पास होते, उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। ही रेडी
2: ठीक है तो।
1: ऐसे रेडी रहने वाले की निशानी ये है कि उनके शिकिल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती। कितनी भी बातें हो जाए, क्योंकि डबल संबंध में रहते हैं, लौकिक में भी है अलौकिक में भी, लेकिन जो सदा खुश रहते हैं वो आगे से आगे कदम बढ़ाता रहते। और बाप उन बच्चों को देख सुखम में उन्हों के ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, जो उन्हों को भी महसूस होता है बाबा का प्यार मेरे से। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत है और सदा ही खुश रहेंगे, जो नहीं भी है तो भी सदा खुश रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

the people.

बच्चों को याद करते हैं, ऐसे नहीं है। कि बच्चे भूल गए हैं, नहीं, एक एक बच्चा

इस दिन को महान समझते हैं, जो बाप और बच्चों का सनबक मिलन होता है, आप भी खुश बचे भी।

logo.

0: अभी ऐसा समय आने वाला है जो इंद्रों को याद करेंगे। इसलिए आप अपना कार्य करते रहो, वो बेचारे आप लोग तो भाग्यवान है, अपना भाग्य प्राप्त हुआ उसको अनुभव कर रहे हैं। और बाप दादा भी खुश है, कि अव्यक्त होते हुए भी बच्चों ने पहचाना और सेवा का भाग्य भी।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा तो देखते हैं, जो भी अपन ने स्वेच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पण साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो प्रभु के को न खाओ, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, ये क्या है, प्रभु के को नहीं तो गाते हैं। और दाल रोटी तो बाप दादा बंदा हुआ है देने के लिए। इस प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वो कभी कभी खिला देगा। वो बहुत अच्छा, चाहे ट्रस्टी बन के भी सेवा कर रही है। अगर ट्रस्टी है, सच्चे ट्रस्टी, मतलब के ट्रस्टी नहीं, सच्चे ट्रस्टी है, तो बाप दादा कभी भूखा नहीं रख सकता। दाल रोटी जरूर खिलाए, क्योंकि बाप दादा भूखा रहता है क्या? रहता है। जब बाप दादा भूखा नहीं रहता, सभी भोग लगाते हैं। आप सभी भोग लगाते हैं ना, चतुराई तो नहीं करते, एक मिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ, नहीं। अगर ट्रस्टी है तो भी बाप दादा बंदा हुआ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसे वो माइक वाला जिसके आवाज पे ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है। चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज पे ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वो जिसके आवाज पे ताकत हो, ऐसा माइक तैयार करो किसी भी रीति से बेहतर को
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yeah.

जय कर्म इंद्रिया।

घर में नहीं रहते।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Or not.
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: See you.

बीच बीच में निकाल, अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और

इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं। एक सेकंड का अभ्यास करो।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जितना प्यार है ना उतना साथ में, प्यार भी चाहिए शक्ति भी चाहिए, अभी शक्ति को बढ़ो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा परिवार का विशेष कार्य है धुआं देना, धुआं लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करते हैं, अभी दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं अच्छा संस्कार वश वो बद दुआ देते हैं। आप दुआ देने चाहते हो लेकिन वो बद दुआ देता है। लेकिन बद दुआ दी लेने वाला कौन? लेने वाले आप हो या वो है, वो देने वाला है, आप लेने वाले। तो उसकी बद दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो, बद दुआ लो नहीं, लेने वाले आप न दो न लो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समझते हैं कि बहुत जन्म के अलबेलेपन के संस्कार पके हैं ना, तो हो जाते, लेकिन अभी अलबेले नहीं बन, तो फिर पीछे बताएंगे क्या होगा, अभी नहीं बताते, क्योंकि बाप दादा ने वर्तमान समय की रिजल्ट देखी सभी की, चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा ये वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में अनेक प्रकार के अलबेलापन, मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है। आजकल का ये विशेष स्लोगन है, सब बातों में सब चलता है, ये अलबेलापन साथ में दोरा दोरा बिन बिन प्रकार का पुरुषार्थ वास्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस भी है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप अपने विशेषताओं को जानते हो? जानते हो? हर एक अपने विशेषता को जानते हो? जानते हैं? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ, दो हाथ नहीं एक। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो? बहुत अच्छा। मानते हो? बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? क्या करते हो? क्या करते हो? सेवा में लगे।

भ्रमण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि बाप का बनने से सोला नहीं है, सोला

Watch this scene.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

उसका खेल देख
见。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चारों ओर सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी आतंक सेवादारियों को मुबारक भी देती है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: समय

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा आपका साथी है, जहां भी मुश्किल आवे उस दिल से कहना बाबा मेरा, बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद कर। तो बाबा भी बंदा हुआ, सिर्फ दिल से कहना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की पट्टी की और 5 ही दिन लगातार कोई भी मिस नहीं हुआ। आज शुरू भी की और अंत तक आपके सामने, तो ये पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करना। चलो दो जने हो सेंटर पर, कोई एक सखी को साथ बना दो और अपने बड़ी को सुना दो, तो क्या है पट्टी करेंगे ना, विशेष नियम बनाएंगे तो उसका मदद मिलेंगे। तो बाप दादा को अच्छा लगा। अभी सहज पुरुषार्थ हो गया ना, अभी वहां जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर 1 लेना।
3: दूसरों को कराएंगे
2: भी और अपना अनुभव सुनाएंगे।
0: अच्छा, सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज चारों ओर की सर्वश्रेष्ठ See.

Versace.
आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हो जाए।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी पूछे

هیس میب. Damn.

0: Sì.
1: Capi, capi.

Sí.

0: रोशन करते और बाप होश में लाते कि तुम मेरे हो। मेरा बाबा कहाँ चला गया? तो बंद आंख याद के जादू से खोल देती।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाबा बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, प्रकाश स्तंभ पर बैठे
2: जी।

What the

0: उसके लिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

po Swarovski, अथॉरिटी में हर कर्म करना उसमें अंतर। तो अनुभवी स्वरूप है, चेक करो चार ही सब्जेक्ट नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए।

0: सोचना अलग है, मनन करना अलग है, स्वरूप अनुभवी स्वरूप बनकर चलना। अभी इसकी आवश्यकता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहिए, क्यों जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सकूं। इसके लिए

ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। जा

Shavabhavna, Shavakamna, Parivartan ki Shresht Bhavna. Unke Sanskar ko, Thodi samay ke liye, परिवर्तन कर सकती आत्मक भाव इमर्ज करो जैसे शुरू शुरू में देखा Swamai.

Sabine.

semi sreštratomaj. Osi. किसी भी आत्मा हो

0: सबसे सहज पुरुषार्थ रहते हैं। सारा दिन दृष्टि वृत्ति बोल भावना सबसे
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी संबंध संपर्क में आए हैं उन आत्माओं की विशेष
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी समय अनुसार तीवर पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। तीवर पुरुषार्थी बनने के लिए बच्चा का रूप देखना है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बहुत अच्छा।

कोई भी बच्चा

0: सभी बच्चे आपसे भी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करते हैं। हाँ
1: जी, अमेरिका वाले गुड मॉर्निंग करते होंगे, यहाँ वाले गुड इवनिंग और गुड नाइट करते हैं।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार आने नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है क्योंकि पेपर तो होना है ना, तो क्या करेंगे अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाप दादा को दे देना। देना आता है ना, लेना तो आता है, लेकिन देना भी आता है ना। छोटे बन जाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं, मम्मी ये आप संभालो। ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो, फिर अगर आवे आएगी, बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से भी फिर आती भी है, लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या, देना

0: समय कम है और पुरुषार्थ आपको तीव्र करना है। जो भी है मेरा बाबा, तो जब मेरा बाबा कहा तो और कोई मेरा है क्या? बाबा ही मेरा है ना। तो पाप पर अधिकार रख करके, अमानत समझ के पाप को दे दो, अपने पास आने नहीं देना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मांड जीवन अर्थात कोशिकी जीवन, कभी कभी बाप दादा देखते हैं, कोई कोई के चेहरे जो होते है ना वो थोड़ा सा क्या होता है अच्छी तरह से जानती है तभी हंसती है। और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है, फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है, आपकी कमजोरी बिना बिना माया के रूप बन जाती, बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में खुश निमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जानने से, मानने से।

Ця правда одє. Ваят. Карни не порти лекен. Смерти не...

0: casa, Nicky. Tataku. Mira, Panalia. Es cabal carnaval y pachiona.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा पार्थक्यता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफल

0: કબજિયાતની અનુભૂતિ જતે છે.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अपने शब्द

awesome.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

So.

Sick.

Seram. Sadik.

summer.

bimbo.

Ich sehe.

Escuchándome.

Espera.

सदा के लिए। क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, सब क्वेश्चंस

Sleepy, but

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, अभी समय के समीपतानुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है चाहे बड़े जोन में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: धरनी पर बैठना ये तपस्या की निशानी। तंदुरुस्ती की निशानी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sí.

Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले। बाप ने कहा और बच्चे ने किया। हर कार्य में चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क में फैमिली लाइफ वालों, आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वालों, फैमिली का अर्थ होता है एक दो के जानना और एक दो को समझ कर चलना। परिवार में भी ठीक हो और चार निश्चय जो सुनाए थे, चार ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, नहीं सारे परिवार का प्यारा। ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए, पिर्जा तो बनती जाएगी, साधारण पिर्जा, लेकिन अभी नजदीक वाले वारिस क्वालिटी बना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Siapa atmaku? Seni. Season mandi tiu. Fast of me. Kisi kopi.
1: Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी भी दिल छोटे नहीं करना, बड़ी दिल बड़ा बाबा, छोटा बाबा है क्या, बड़े दिल बड़ा बाबा है ना, तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। स्लोगन है बड़ी दिल सच्ची दिल साफ दिल हर मुराद हासिल, जो भी किचरा आवे ना, किचरे की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचरा उड़ के आ जाता है, लेकिन किचरा अपने पास नहीं रखो। जैसे इस दूर कमरे में सोते हो और किचरा हो जाए तो क्या होता है, सफाई नहीं करो, मच्छर होते हैं, बीमारियां होती है। तो ये भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, निकाला नहीं, तो वो वृद्धि को पाती रहती। बस बाबा, मेरा बाबा, हाजिर बाबा बंधा हुआ है। बच्चा, बाप का बच्चा, भगवान का बच्चा, याद करे मेरा बाबा और बाबा हाजिर नहीं हो, ये हो नहीं सकता। आपके पास बाप को बांधने की रस्सी है,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Chicos.

बच्चा।

red sun.

么久

ich vermisse. Und Johann Drei. Sarkam Danske. Barbar. Wo den Schan mir hätte. Aajkal duniya mein tension bahut badha to aapka tension free ka anubhav aur tension चलन और चेहरा उनों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा अगर आज दुनिया में चक्कर लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता है? टेम्पररी अपने को खुश कर

0: Dingchen war loco. Dingchen free. Ka example tikao. To fobi. Onko saara tikai.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है, किसको सी

Yo lo...

Namaste.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Some.

0: sama apa nih? Ormesap kamu. Jusyate apna pan jao tena. Fa. Halka banote.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Stop it.

Es ist

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Okay.

0: शक्ति देंगे, गुण देंगे, वो कितने दुआएं देंगे, और दुआएं लेना सबसे सहज साधन है आगे बढ़ने का। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं, कर सकते हो तो करो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं, सफल करो खजानों को। सुनाया ना, मन सास से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, और बुद्धि से समय का खजाना, मन संपर्क से खुशी का कसन। सफल करो तो सफल करने से सफलता मूर्त बनी जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं सीढ़ी का नहीं। समस्या आई मिटाया, कभी दो दिन लगाया, कभी दो घंटा लगाया, ये सीढ़ी चढ़ना है। दुआएं सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो लिफ्ट में सेकंड में पहुंच जाएंगे जहाँ जाओ, चाहे सुखी वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज में पहुंचो, सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट का, बाप दादा तो कहते 1 सेकंड, 1 सेकंड में लिफ्ट में चढ़ जाओ। सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने सुनाया था कि चाय दादी के लिए कहेंगे ऐसे कि बेशक से पूछेंगे कहेंगे कुछ नहीं है, तो ये पेशेंट नहीं है। पेशेंट स्वरूप दिखा रही, बीमारी भी है लेकिन न्यारी और प्यारी मन चल रही है वो अपने मस्ती में। ये प्यूरिफाई शरीर से अपना लास्ट स्टेज और भविष्य अष्ट देवता प्रसिद्ध होना और भक्ति में इष्ट देव बनना, तीनों ही संस्कार भी नहीं।

0: 会。अर्थाधिक दृष्टि दी उस दृष्टि के विल पावर से अपना बहुत सर्वस्नेह सर्वसमर्थ सर्व कार्य करता निमित्त और निर्माण इसमें ब्रह्मा भाव को पूरा पूरा फॉलो करते हुए सारे ब्राह्मण परिवार में शक्ति बढ़ी और बाप दादा के अपने दादियों के साथ साथ रह के बहुत अच्छा पाठ बजाया। अभी भी सुखम में आपके साथ पाठ बजा रही बाप दादा भी दादी के कमाल का थे। सबको संगठन के बंधन में सने और सहयोग के आधार से बांधा और ये अमर वरदान सबका प्यार अच्छा है ये देख करके भी बाप दादा को खुशी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: डबल फॉरेनर्स का फेवरेट शब्द है, बोलो कौन सा होगा? दो शब्द और है भी इंग्लिश, कभी भी किनारा नहीं करता।

pisada, hein, mano.

बच्चों को रिवाइज करा रही है। किस्सा

时候。

observa essa mania. Jesus.

Radio Menace.

Yes.

Okay.

mais kuih peci. Kuih sama.

Yes.

Existe companhia.

Fireworks are really cool.

settimana.

Видел.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: tě, Matyho, to i se sličný manče pár. Karam karne ke lia, jo, je sličný manče trama. To trama me, čo by karam kia. स्टॉप लगाओ तो फुल स्टॉप भी क्या है बिंदु इसलिए तीन बिंदु सदा याद रखो सारी कमाल देखो आजकल के दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तो किसका है पैसा पैसे का मैं तो है ना माँ बाप भी कुछ नहीं है पैसा ही सब कुछ है उसमें भी देखो अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो क्या बन जाएगा दस बन जाएगा ना अच्छा दूसरी बिंदी लगाओ सौ हो जाएगा तीसरी लगाओ तो बिंदी की कमाल है ना पैसे में भी बिंदी की कमाल और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल और करण करावनार भी बिंदु है तो सर्व तरफ किसका पैदा हुआ बिंदु का ना बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ तो याद कर सकते बिंदु बनो बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ बस ये पुरुषार्थ जब कोई समस्या आती है बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना बिंदु लगाना क्वेश्चन मार्क इतना टेढ़ा होता है देखो लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज है
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो यहाँ है खुशियों का संगम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: व्यक्ति भी है मटे मटे मटे में मिल जाते, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से चाहे गुस्सा

Dave.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो, वो कौन सा? पाप करावन हार है और मैं आत्मा, मैं फलानी बहुत सहज बनेगा। स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या? कारण हार के बजाय मैं करने वाली या वाला हूं, करण हार के बजाय अपने को करावन हार मैं कर रहा। जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो ही मैं तो ये गेट अभी पूरा बंद नहीं किया। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज खोल लेती और आ जाती। अगर करण हार तो कराने वाला अवश्य याद आएगा, कर रही हूं कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला बिना करावन हार के करण हार बन नहीं सकते। डबल

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

चुके सारे दिन में।

कुछ छोड़ना भी है और कुछ नया। कौन धारण करना है सोचो।

सदा रहे। ये विशेष ध्यान रखना, अपने दिल में कोई न कोई विशेष उमंग

Oh shit.

just so

उसके लिए बाप दादा फिश

You've popped.

कोई बात छोड़ने चाहती है, लेकिन मैं तो बहुत बातें देखना।

संकल्प आज का अगर किया तो आज का दृढ़ संकल्प करने में आप हर एक को एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। Sit.

kebab, Tata. Take this. Sankalap Sabha.

0: occhi.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी प्रकृति
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप देखते हो, आपका गायन है मर्सीफुल, आप मर्सीफुल देव देविया और देवताएं हो ना, हो
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

Barça.

appreciation. Guardian. Olé.

अपनी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: खुश रहो, कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई दे, नाचो गाओ, आपके ब्रह्मांड जीवन है, खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की, तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वो अगर ऐसा गंभीर हो के नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता, गंभीरता अच्छा है लेकिन टू मच गंभीरता, थोड़ा सा सोच विचार कर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, वो मेरे बाबा, वो मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, मेरा संसार हो, बहुत मीठी मीठी बातें करते और दो चार घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ गया, बात नहीं आती भूत आता है। का भूत वाला भी फोटो है, देखो एक यादगार भी है भूतनाथ, तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहां से आया कैसे आया और कैसे पका रही है, ये खेल भी देखती रहती। कोई तो घबरा कर भी दिल शिकस्त भी हो जाते, फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको संजीवनी बूटी कोई द्वारा खिला के सुरजीत करे, लेकिन वो मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गमाना, थोड़ा रख, थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो, फिर भी आपके भाई बहने तो अपने भाइयों के ऊपर, अपने बहनों के ऊपर
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लोग एक काम क्यों करें, ये तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहां भी जाते हो वहां सिंड्रा खोलने का उमंग रहता है ना। लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य के निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो, लौकिक पन नहीं हो। अलौकिक पन है तो लौकिक कार्य में भी समर्पण। लौकिक कार्य छोड़ के समर्पण समारोह मनाना है, ये बात नहीं। नहीं तो फिर थी कैसे होगी। इसीलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो तो ऐसी आत्माओं को जो निमित्त लौकिक समझती है और रहती अलौकिकता में है, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक। समझा। इसीलिए ये नहीं कहना दादी हम कुछ रहो नहीं कहो। और ये डबल प्रालंबोध बना रहे आवश्यकता। अगर समझेंगे तो आप बीच रहेंगे, आपको क्या जिम्मेवारता दिया है। आप अपने लौकिकता में अलौकिकता लाओ। थको नहीं, थक जाते हैं। लौकिक काम करके थक के आते हैं, क्या करें। नहीं, खुशी खुशी में दोनों निभाओ, क्योंकि टीका है कि डबल विदेशी आत्माओं में कार्य दोनों तरफ करने की शक्ति है। तो अपनी शक्ति को कार्य में लगाओ। कब छोड़ेंगे, क्या होगा, ये पाप और दादियों या जो निमित्त है ना उनके ऊपर छोड़ दो, आप नहीं सोचो। कौन कौन है जो लौकिक कार्य भी करते और सेंटर भी संभालते, वो हाथ उठाओ। लौकिक कार्य भी करते हैं और सेवा के केंद्र भी संभालते, हाँ उठाओ हाथ। अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा। पांडव पीछे बैठे, अच्छा है। आप निश्चिंत रहो, नंबर आप लोगों को वैसे ही मिलेंगे, जो सारा धन सेवा करते हैं उन्हों जितना ही मिलेगा। सिर्फ ट्रस्टी होंगे करना, मैं बन में नहीं आना, मैं इतना काम करती हूँ, मैं बन नहीं करा वरना हार करा रही, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, पावर के आधार पर चल रही।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दिल में झंडा तो लहरा लिया है और कपड़े का झंडा भी लहरा लिया है जगह जगह पर। अभी प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराना ही है। यही फिर चलो दृढ़ प्रतिज्ञा का फिर चलो के जल्दी से जल्दी ये नाम बाला का लहराना ही है। अभी तो की दुनिया को मुक्ति धाम में, जीवन मुक्ति धाम में भेजो। बहुत तो की है ना, तो रहम करो। अब तो कसे चुरा सबको दिलाओ, क्योंकि परेशान बहुत है। आप शान में हो, वो परेशान।
2: परेशान आत्मा को आप शान में लाओ।
1: सदा सेवा करते रहो। वायुमंडल फैलाते रहो, सुखदाता के बच्चे, सुख का वायुमंडल फैलाते चलो। यही मनाना है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थ, सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है, मेहनत का काम मुश्किल होता है ना तो टाइम लगता है। तो कौन हो सभी सहज पुरुषार्थ बोलो। याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: शिवा का रोड़े आप चले, शिवा तो बहुत करती है, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, और सेवा पे फिरती भी बहुत अच्छी हो रही है। फिर भी मैं चारटी का चमका खाता कम क्यों, तो रुआरियान में सेवा तो सब कर रही है, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रही है। फिर कारण क्या है, सर्व की संतुष्टता। आखिर सेवा की मेहनत और समय लगाया, दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता चाहे साथी चाहे जिनों की सेवा की, दिल में संतुष्टता अनुभव करे, बहुत अच्छा कह के चले जाए, नहीं दिल में सत्य।

0: Será que Orso aqui santo está? Yeah. सेवा जिस आत्मा की करते हो, दोनों में निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ सने बताने जगदम्बा माँ को दिखाया कि इस सब विधि से से बढ़ता जाता है। जमा हो जाता जैसे टिक टिक टिक टिक जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगदम्बा बड़ी खुश हो रही थी, जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी निश्चय पर बात नहीं समझना अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने की वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल लेगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हर एक वर्गीकरण से ऐसी कोई स्पीकर तैयार हो, आप टॉपिक देते हो, उस पर भाषण करते हैं, नहीं मंगावे। मुझे ये करना है, ऐसा कुछ प्लान

0: टेस्ट को खत्म कर पेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैले, वेस्ट अभी भी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हर भोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ, हर संकल्प में पवित्रता का मैं तो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव, इसको कहा जाता है
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने समय की परवाह आज ये भी कहा कि सहयोगी है, लेकिन अब यज्ञ नहीं बनो। वारिस क्वालिटी बनाओ, जो भी आप सहयोगी है और को अपने जोन में। बाप दादा ने पहले भी कहा है, लिस्ट तो आई है अच्छा, लेकिन हर एक जोन संपर्क में लाओ, रहे मीटिंग करे और आगे के प्रोग्राम बनाए, तो हर जोन जहां भी उनके है सभी जोन से कोई बड़े स्थान पर जहां भी जोन में हो सहयोगियों करके उनकी मीटिंग करो और उन्हों को विशेष एक बल भरो और आगे बढ़ने का। जब तक किया उसकी मुबारक दो और आगे बढ़ने का प्लान

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Savoir.

saudável.

इसमें अटेंशन देना है, इसके हाथ उठाओ। सुबह को उठते ही ये बाबा शब्द याद कर, पाप देख

वहां शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Semangat ku jatuh.

Forzar.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, ये होमवर्क देते चाहता, ये तो मास हर एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प बचत का अपने प्रति विधि बनावे। इन दो मास में हर एक अपना चार्ट रखे, व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया, क्योंकि अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए

मटर के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी, कहा हुआ भी है मन जीत जगत जीत। तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को संपन्न करना है। कर सकते हैं, करेंगे, वो हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देंगे। अपने रिजल्ट

0: मन खुश। तो मन की खुशी बांटेंगे, ये पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का अटेंशन रखो। व्यर्थ समाप्त संकल्प समय दोनों समाप्त। और समरथ संकल्प समरथ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Got it.

就是个人，都是人下你，地方不下的。चारों ओर के बच्चों को मोबाइल

0: अटेंशन जय।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Sorry.

0: फंस गया, ये नहीं सोचना अच्छा मैं आठ में तो ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी, आ जाएगा तो 108 में लास्ट नंबर भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: This is

Two months.

吃。

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। एक
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी आप और बाप कंबाइंड है, तो कंबाइंड है तो सिंगल हुए क्या? लोग के जीवन अलग चीज है, लेकिन ब्रह्मांड जीवन में कंबाइंड रूप में ऐसे कंबाइंड हो जो कोई भी अलग कर नहीं सकता। ऐसे कंबाइंड हो ना, कंबाइंड हो ना कि अकेले हो, कंबाइंड समझते नहीं ना, समझते।

0: आसाते और अविनाशी साथ निभाने वाले बाबा कहा और बाबा हाजिर है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सब जा क्या करना।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रही है। समय की समापति अचानक होनी है, ये नहीं सोचो, मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन? समय या स्वयं परम आत्मा? परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके, और समय संपन्न बनेगा इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामानुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेंगे, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो, वो रचना है। आप मास्टर रचता हो, तो रचता का इंतजार रचना करे न कर। मास्टर रचता समय का इंतजार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस से आपकी रूहानी शुभ भावना शुभ कामना की वृद्धि दृष्टि और सृष्टि को बदल जैसे मधुबन में अनुभव किए ब्रह्मा बाप के कर्म भूमि योग भूमि चरित्र भूमि शुभ भावना, शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना। Perfecto.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मेजॉरिटी बच्चों का फर्श का पोता मेल देखा, क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा, बाप दादा ने देखा कि बेटा ने और समाने की शक्ति कम है, मिटाते भी है, उल्टा देखना सुनना सोचना बीता हुआ भी मिटाते हैं, लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस दूसरा है सबकॉन्शियस, मिटाते हैं लेकिन माना के प्लेट को स्लेट को कागज को कुछ भी को पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते लेकिन फिर समय पर निकल आता, इसलिए जो चार शब्द बाप दादा ने सुनाया वो सदा नहीं चलते। अगर मानो बिल्कुल मानक की प्लेट को कागज को पूरा नहीं मिटा तो पूरा साफ न होने के बदले अगर आप और अच्छा लिखने भी चाहो तो स्पष्ट होगा, अर्थात सर्वगुण सर्वशक्तियां धारण करने चाहो तो सदा और फुल परसेंट में होगा, बिल्कुल क्लीन भी हो क्लियर भी हो, तब ये शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते। कारण ये है मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं, थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती जलन व्यर्थ बातें व्यर्थ चाल चलन समाई हुई है सूक्ष्म रूप में, फिर समय पर साकार रूप में आ जाती। समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। सूखियम रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर समाने की शक्ति नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ, नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आए।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर, दूसरा कड़े न कड़े करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना, कमजोर
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने आज अमृत वेले चक्कर लगाए, सभी

सबसे बड़े थे बड़ी।

इसकी और आवश्यकता क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं किसी स्वरूप

0: और शरद में भी बहुत मदद करते हैं। तो बाप दादा ने देखा, अनुभव की अथॉरिटी स्थिति सदा समाई हुई रहती है। उसकी शिकिल चलन सेवा कर
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे अभी सब खुशी में सभी

Ezeitera reina. Canto el lao. Reina. Reina. Os sabe.

خوش مزاج چهره ایسے

कुछ रहता चेहरा अच्छा लगेगा। तो आज से सभी बच्चे सिर्फ सो नहीं, सभी बच्चे अपने दिल में प्रॉमिस करो, सदा खुश रहेंगे और सभी को खुश

し。

Nebraska.

しれない。歩くしかない。ヘイパさん、ディスコパさんだよ。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई कैसा भी हो, स्वयं को चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हूं, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना आखिर ये भी कब तक, इसकी भी समाप्ति समारोह तो होना है, दूसरे को नहीं देखना।
2: और
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अपसेट हो तो आपकी जिम्मेदारी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: फिर से

0: should be a thief or that man watching Karame Ati Mejay Sadharan Purusharath.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दादियों ने डबल विदेशों को भी मर्ज किया, डबल विदेशी उठो, yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Yes.

0: saranno. चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो, वो आपकी चलन से ऐसे महसूस करती है कि ये न्यारे और अलौकिक है, कि साधारण समझती है ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है, एक बुक निकलता है ना जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, कितनों का नाम आता है, बहुत होते हैं। इसने ये विशेषता की, ये इसने विशेषता की, नाम आ गए। लेकिन जिन्होंने भी उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपके प्रैक्टिकल चलन में चेंज देंगे। ये अभी आवाज नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि ये साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मुहूर्त है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जन्म में

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

讲课。

चमकती हुई

Me dejo.

Başta. Casar, não sei.

0: स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज का दिन प्यार का दिन है, तो प्यार में तो सबसे जो जाते विश्व परिवर्तन।

0: Pisuako banan ni Valio. Papta na to chota sa kam dili. Sangkalap karte ho. Haath uthao. Sangkalap karne wale. कुछ करती है मुबारक हो अभी दूसरे वाली आए तो कुछ खबरी सुन अपने नजदीक वाले साथियों को छोटा सा काम देती है, सभी को नहीं के।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधन नहीं है और ख्वाब को तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग्य, पहले साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है साधन यूज करो, बड़े दिल से करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते कमल पुष्प समान। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपका कर्म का योग का फल है। लेकिन व्यक्ति की बात, ऐसे तो नहीं कि साधन की प्रवृत्ति में साधनों के वश फस्त नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, शूस करते हुए उनकी परवाह में नहीं है। न्यारे साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी आवश्यकता है विश्व में अति में जा रहे हैं, तो अभी सच्ची वैराग्य वृत्ति चाहिए और वो वायुमंडल बनाने वाले आप पहले स्वयं में फिर विश्व।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जीवन की मोट सदा केयरफुल और केयरफुल, मोट बदलना नहीं चाहिए। राय रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? करना सेवा या परिवार से किनारा है। और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, मूड नहीं बदली करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप निवारण करने वाले के कारण में आने वाले, निवारण करने वाले ठीक कर क्या लिया है? कंट्रेस्टर होना हाँ। तो क्या कंट्रेस्ट लिया है? क्या प्रकृति के मूड भी चेंज करें? प्रकृति को भी चेंज करता है ना, तो प्रकृति परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। मूड चेंज होती है कि नहीं? हाँ होती है, कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाके बैठ, ज्ञान सागर नहीं स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना, करते हैं। या कहेंगे आज पता नहीं, अकेला अकेला लगता है, तो पाप कहाँ गया? अलग कर दिया। कंबाइंड से अकेले हो गए। ये प्यार, ये इसको प्यार कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार का मूड, एक होता है मूड ऑफ, वो बड़ी बात, लेकिन मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक। मूड ऑफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखता है, परों को बहुत खेल, अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते। ऐसा खेल नहीं करो। क्यों? क्यों बाप दादा का बच्चों से सभी से प्यार? बाप दादा ये नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त है वो बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने। नहीं, सबको समान बनाता ही है। यही बाप दादा का प्यार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संकल्प स्वरूप में समय

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी बच्चे

Samara.

सच्ची दिल पर बहुत सहज राशि हो जाती।

ऐसे

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्राह्मण परिवार का अर्थ है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का सब कुछ हो गया। बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है, चार ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में ये स्मृति में रहे कि सब
3: see।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब नौ लाख आएंगे तो साधन सुन

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते। Salud.

0: sad movie. But one day, Sayogi banaye uski mubarak aur banao.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: prefieren sacar la boca. Chiuchia che sigon. E se tu cacà. Anboca teo. Bat tu alina. Artat apane copi.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया। मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन आर्डर करो स्वीट साइलेंस तो अनुभव करो आर्डर करने से अधिकारी बनने से ऑर्डर में रहते हैं अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Shh.
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस अभ्यास को नेचुरल स्थिति बन जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: माया और परमात्म बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है। माया का काम है आना और आप बच्चों का समझती।

सोचते कि अभी तो टॉयलेट का बोर्ड नहीं लगा, अभी तो समय पड़ा, पुरुषार्थ कर रही है, पहुंच जाएंगे तो माया भी समझती है, एक तो आने दिया, दूसरा